द प्रोग्राम साइन डीरजा शुक्रिया दाकू मोहम्मद इसहाक लेक्चरर इन केमिस्ट्री यो दुनिया मनाना बिल्कुल जमुंग मकसदम दार चेराशु पो माशेरा किस्तन आसे चिकम दे जबदाव बागे द जमुंग डेर खैन दी जमुंग डेर मैं दे बदा प्रोग्राम और इन मुंगो चे दे पवे साथत बांधी दे माइक पवे साथत बांधी केदीशी यगी से चेंजेस राशी

मोहिबुल ला जी, हम आपका प्रोग्राम बहुत सुनते हैं और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। डेरा मनाना डेरा मेहरबानी, थैंक यू सो मच मोहिबुल्ला, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तरबेला से। बहुत ज्यादा ममनून मशकूर हूँ आप प्रोग्राम सुनने का, थैंक यू सो वेरी वेरी मच। आप दोबारा भी आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मोहिबुल्ला।

0: बिल्कुल जनाब जमगर सासो सात चिकम दे 25 मिनट आन फाते बिल्कुल राशिद प्रोग्राम इस जोड़ा छे जी तासुल राजू तासु द पार राजू
1: सहर के बयसो
0: अद्व गेंडे जना मुंग तासुल दरकड़ी सही दा पर ये कहना है कि कराजू न तासुल राजू वजह ददीदार जी सासु द मीने सासु द इखलास मुंग कदर को ओके जी लेट मी चेक हु इज देयर पासे पर 938 285 495 मान रहा था कौन शेद प्रोग्राम इस

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीर बाबा मीद शर मोमन हाल शाहबी आन भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, हु कुचरता द दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी, न प रारवान वक्त की दग जवानकी स्तासु द खाइस द खराबेदो बाइस जुड़ देशी। द
1: अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ।
0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: जिन्होंने किसी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते देखा। पहले सिर्फ जो है एक नाम अच्छा लगता है, फिर उस नाम की आवाज अच्छी लगने लगती है, फिर उसकी मौजूदगी सुकून देने लगती है, फिर उसकी गैर मौजूदगी भी बेचैन, और एक दिन इंसान खुद से पूछता रह जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ।
1: बन गए
0: ये याद रखिएगा लिसनर्स मेरी बात के, मोहब्बत शायद कभी एक लम्हे में नहीं होती, मोहब्बत तो वक्त के नरम कदमों से चलती है, वो रोज थोड़ा थोड़ा दिल में उतरती है, रोज थोड़ा थोड़ा जगह बनाती है, और फिर एक दिन पूरा दिल अपने नाम कर लेती है। और जनाब यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अजीब बात यह है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी के चेहरे से नहीं उसकी आवाज से मोहब्बत करने लगता है, वो आवाज जो कभी फोन पर सुनाई दे, कभी रेडियो पर गूंजती हो, कभी किसी भीड़ में कानों तक पहुंचती हो, मगर दिल तक जाकर ठहर गई हो, फिर वही आवाज रात की तन्हाइयों में याद आती है, वही लहजा खामोशियों में सुनाई देते हैं, और वही चंद लफ्ज दिल के अंदर बार बार गूंजते रहते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि लिसनर्स की कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सो जाता है मगर उसके ख्वाब जाग रहे होते हैं, ख्वाबों में वही शख्स आता है, वही बातें होती हैं, वही मुस्कुराहट, वही आवाज दिल को छू जाती है, और इंसान महसूस करता है कि हकीकत से ज्यादा खूबसूरत तो ख्वाबों की दुनिया होती है। फिर सुबह होती है, आंख खुलती है, सूरज निकलता है, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी उदासी रह जाती है कि काश ख्वाब थोड़ी देर और चलता, काश वो आवाज कुछ लम्हे और सुनाई देती, काश वो एहसास हकीकत बन जाता। याद रखिएगा लिसनर्स के, शायद इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग किस्मत से नहीं एहसास से मिलते हैं, वो हमारे नसीब में हो या ना हो हमारी दुआओं में जरूर शामिल होते हैं, वो हमारे साथ चलें या ना चलें, मगर हमारी यादों में हमेशा रहते हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने या ना बने, मगर हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब जरूर बन जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आया है या आया था जो पहले सिर्फ जाना एक अजनबी था, फिर एक जान पहचान बना, और ये कि फिर एक आदत बना, फिर एक दुआ बना, और फिर एक दिन आपकी पूरी दुनिया बन गया। सोचिएगा जरूर, क्योंकि बाज़ लोग शोर मचाकर दिल में दाखिल नहीं होते, वो खामोशी से आते हैं मगर मोहब्बत छोड़ जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उनकी याद सताती रहती है, फिर पूरी जिंदगी उनकी याद एक नर्म सी रोशनी की तरह दिल में जलती रहती है। सो एतवार के हवाले से मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा लिसनर्स की, आज एतवार के दिन है, वैसे तो हफ्ते के सातों दिन अपने अपने मतलब जो है ना रंग रखते हैं, मगर एतवार की बात ही कुछ और होती है। कोई देर तक सोता है, कोई चाय की प्याली हाथ में लिए छत पर बादलों को देखता है, कोई अपनों के साथ वक्त गुजारता है, और कोई ऐसा भी होता है जो मसरूफ दुनिया से चंद लम्हों के लिए साइड पे हो जाता है। मैं लिसनर्स यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, जो चंद लम्हों के लिए मतलब जो है ना साइड पे हो जाता है, चंद लम्हे चुरा कर सिर्फ अपनी यादों के साथ बैठ जाता है, और जनाब इतवार शायद सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, कैलेंडर बदलने का एक दिन नहीं है। यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, ये दिल को सांस लेने का मौका भी देते हैं। हफ्ते भर की थकन, शोर, मसरूफियात और भाग दौड़ के बाद जब इतवार आता है तो यूं महसूस होता है, यूं लगता है जैसे वक्त खुद आहिस्ता चलने लगा हो, जैसे घड़ी की सुइयां भी ये कह रही हों कि आज जरा दिल की सुन लीजिए। और यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, जान भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, आकिब जान कह रहे हैं कि वारे भाई आपने क्या दिल की बात की। आकिब आपकी इस बात पे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि

अच्छा आकिब जान, मैं आपकी इस बात पे ये बात कहना चाहूंगा कि जनाब अभी अभी हमारे स्टूडियो कोऑर्डिनेटर, ट्रांसमिशन इंचार्ज और आकिब जान ने एक जुमला कहा और सच मानिए वो जुमला सीधा दिल में उतर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जहां कहा कि वाकई दिल की बात आपने की है, और मैंने दिल ही दिल में सोचा है कि शायद दुनिया में सबसे मुश्किल काम दिल की बात कहना है, क्योंकि जबान तो हर कोई चला लेता है मगर जो है ना दिल

बहुत कम लोग खोलते हैं या दिल की खिड़कियां जो है ना कम लोग खोलते हैं। अक्सर लोग होंठों से वही बोलते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है, लेकिन दिल में वही दबाते हैं या दबाए रखते हैं जो असल हकीकत होती है। इसलिए जब कभी किसी महफिल में कोई एक सच्चा जुमला निकलता है तो सुनने वाला फौरन जो है ना महसूस कर लेता है, कि ये लफ्ज किताब से नहीं किसी टूटे हुए दिल से निकले हैं। और शायद मोहब्बत भी यही है कि जब आप किसी की बात सिर्फ सुनते नहीं महसूस भी करते हैं, जब अल्फाज कानों से गुजर कर सीधे दिल में उतर जाएं, जब एक आवाज आपकी खामोशियों का तर्जुमा बन जाए, जब एक जुमला बरसों से बंद आंखों को नम कर दे, तब समझ लीजिएगा कि बात सिर्फ गुफ्तगू की नहीं हो रही, ये दिल से दिल तक का सफर बन चुकी है। जनाब बड़ी बात यह है यहाँ पे कि यह बड़ी एक अजीब बात है कि एक शख्स माइक्रोफोन के सामने बैठता है, हजारों लोगों से मुखातिब होते हैं, मगर उसे मालूम भी नहीं होता कि उसकी एक बात किसी अजनबी के दिल में हमेशा के लिए जो है ना घर कर जाएगी। कहीं कोई खामोश बैठा मतलब जो है ना सुन रहा होता है, कहीं कोई इन्हीं लफ्जों को अपनी डायरी में लिख रहा होता है, कहीं कोई इन्हीं जुमलों को अपनी दुआ बना लेता है, और कहीं कोई इन्हीं एहसासात को अपनी कहानी का अनवान बना देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते, मतलब इन्हें जिया जाता है। कुछ आवाजें सिर्फ फिजा में गूंजती नहीं, वो बरसों तक किसी की मतलब सांस बन जाती हैं या किसी की रूह में जो है ना सुनाई देती हैं। कुछ लहजे सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं होते, वो इंसान की पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आज आकिब जान ने कहा है कि वाकई दिल की बात की है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए जो है ना क्या हो सकती है कि मेरी आवाज सिर्फ रेडियो तक महदूद नहीं रही, बल्कि जो है ना किसी दिल के अंदर जाकर अपनी एक जगह भी बना चुकी है। जनाब यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सब की जिंदगी में एक न एक ऐसी बात जरूर आती है, या मतलब जो है ना एक न एक ऐसी बात जरूर होती है जो कभी जबान पर नहीं आती, एक ऐसा एहसास जो हमेशा खामोश रहता है, एक ऐसा नाम जो होंठों तक आकर वापस पलट जाता है, और एक ऐसी दुआ जो हर रात दिल से निकलती है। मगर ये ना कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हर रात दिल से निकलती है मगर किसी को सुनाई नहीं देती, शायद इसीलिए खामोश दुआ का नाम मोहब्बत है, और शायद इसीलिए खामोश मोहब्बत का नाम दिल की बात है।

0: अच्छा जनाब, हमें आखिर में कॉल आई जी गुलनबिशा काका की, जो कि बाजा से हमें कॉल कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलनबिशा काका, आपने हमारा साथ दिया। इसके अलावा हमारे साथ दे रही है हानी, हानी हमारे साथ दे रही है जी टोपी से। हानी कह रही है कि तमाम सुनने वालों को सलाम जी, और आपको मेरी तरफ से, मेरी साइड से जो है ना, बहुत सारा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हानी, आपने हमारे साथ दिया। और हानी ने क्या मैसेज किया हुआ है, हानी हानी कह रही है कि हाय ताहिर जी, रेडियो अभी ट्यून किया है मैंने, और हानी ये आप हानी है या हानी है, कल आपने मेरा आखिरी मैसेज जो है ना शामिल नहीं किया था। हाय ये बहुत बड़ी मतलब जो है ना अजियत वाली बात हुई कि आपका आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम मैंने शामिल नहीं किया। बल्कि आज का तो मैसेज मैंने शामिल कर दिया। आखिरी आपने क्या पैगाम लिखा हुआ था,
1: चोर चला दुनिया।
0: ताहिर आपको पता है मेरे तो कोई, मेरा तो कोई नहीं है सिवाय उस बच्चों के जिनकी मैं जो है टीचर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हानी, आपने हमारे साथ दिया और आपने इतनी अच्छी और मतलब जो है ना बेहतरीन गुफ्तगू की। कॉलर चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब नंबर माता दरकड़े हो, मुफ्ती साहब नंबर खुशगमदन खैर माता नो दरकड़े अस्सी लगी है जान लगी है वहां से पता था प्रोग्राम नरुस सुराबी था ओके जी दस लाइव प्रोग्राम देखा लाइव रेडियो प्रोग्राम दे प्रोग्राम नरुस सो कॉन्टेक्ट कॉल प्रोग्राम नरुस्तुजगमदन तासुरात ले 0307

0: वेल स्वीट लिसनर्स, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं और मैं यहां ये बात करना चाहूंगा कि जनाब इस दुनिया में शायद ही मतलब जो है ना कोई ऐसा इंसान हो जिसे किसी ना किसी चीज का नशा ना लगा हो
1: ना सुना।
0: इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा मतलब जो है ना शख्स हो जिसे कोई नशा ना लगा हो, कोई एडिक्शन ना लगी हो, किसी न किसी चीज का नशा ना हो। किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, मतलब ये कि किसी को इख्तियार का नशा है, किसी को अपनी अना का नशा है, और किसी को किसी के साथ गुजारे हुए लम्हात का मतलब चंद लम्हों का नशा है। मगर एक अजीब सा नशा और भी होता है जो ना बाजार में मिलता है, ना किसी बोतल में बंद होता है, ना किसी दवा से उतरता है, किसी मेडिसिन से उतरता है। वो होता है किसी की आवाज का नशा। कभी कभी एक सादा सा लहजा, एक धीमी सी गुफ्तगू, एक आहिस्ता से बोले गए अल्फाज लफ्ज किसी इंसान के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि फिर वो आवाज ना सुनाई दे तो दिन अधूरा लगने लगते हैं ना। और जनाब ये बात याद रखिएगा कि ये बात मेरे लिए भी हैरत का बायस बनती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपकी बातों से ज्यादा आपका स्लो अंदाज पसंद है, आपका ठहराव पसंद है, आपकी आवाज में जो सुकून है वो हमें बार बार जो है ना सुनने पर मजबूर कर देते हैं। ये सुनकर दिल को शुक्र भी मतलब आता है, या शुक्र भी अदा करता है दिल, एक जिम्मेदारी भी महसूस करता है, क्योंकि इंसान की आवाज अगर किसी के दिल तक पहुंच जाए तो वो सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो किसी की तन्हाई का सहारा बन जाती है, किसी की उदास शाम की रफाकत बन जाती है, और ये कि किसी के आंसुओं की खामोश गवाह बन जाती है। लेकिन जनाब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नशा चाहे जो है ना किसी भी चीज का हो, उसकी शिद्दत इंसान को अपने अंदर कैद कर लेती है। अगर किसी को किसी की आवाज से मोहब्बत हो जाए तो वो खूबसूरत एहसास हो सकता है, मगर जो है ना असल खूबसूरती उस वक्त होती है जब उसमें मतलब जो है ना एहतराम हो, दुआ हो, दुआ का तवाजन शामिल हो। कुछ लोग हर रात सिर्फ जो है ना एक मानूस लहजा सुनकर सुकून से सो जाते हैं, कुछ लोग किसी अजनबी की गुफ्तगू में अपना बिछड़ा जो है ना हौसला तलाश करते हैं, और कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो एक आवाज को सुनकर यूं महसूस करते हैं जैसे जो है ना बरसों बाद किसी ने उनके जख्मों पर हाथ रखा हो। यहाँ ये बात मैं नहीं बोलूंगा कि जख्मों पर नमक छिड़का हो। जनाब दिलों की दुनिया भी बड़ी अजीब दुनिया होती है। यहाँ बाज़ औक़ात एक शख्स पूरी जिंदगी का मतलब जो है ना हिस्सा बन जाता है, एक शख्स पूरी जिंदगी साथ रहकर भी जो है ना अपना नहीं, यूं भी होता है ना कि एक शख्स पूरी जिंदगी साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता, और कभी कभी यूं महसूस होता है, कभी कभी यूं भी होता है कि कभी सिर्फ एक आवाज बरसों तक इंसान के दिल में गूंजती रहती है, वो आवाज किसी गीत की तरह याद रहती है, किसी दुआ की तरह जो है महसूस होती है, और किसी पुरानी खुशबू की तरह जो है ना अचानक याद आ जाती है। और अगर कभी आपको किसी की गुफ्तगू में सुकून मिले, किसी के लहजे में अपनाइत महसूस हो, तो इस एहसास को एक खूबसूरत अमानत की तरह जो है ना संभाल कर रखिएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज शायद यही है कि कोई आपके टूटे हुए दिल को सिर्फ चंद लम्हों से जोड़ने की कोशिश करे। आज यहाँ पे ये बात इतनी कहना चाहूंगा, इतना यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कभी कभी इंसान को किसी शख्स से नहीं, उसके हो जाती है, उसके बोलने के सलीके से, उसके लफ्जों के वकार से, उसकी खामोशियों से, और उसकी आवाज के उस नर्म एहसास से जो कानों से गुजर कर सीधा मतलब दिल में जाके ठहर जाती है। और जब कोई आवाज दिल में घर कर जाए तो फिर वो रेडियो पर नहीं चलती, वो इंसान की यादों में हमेशा के लिए गूंजती रहती है।

शामिल की जी उसने मोहब्बतुना टोल दरोग दरोग, ये किसकी आवाज में है जी? ये ट्रैक तो खैर सुना सुना मुझे लगता है। उसने मोहब्बतुना चले मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिलता है मैं जरूर शामिल करता हूँ। अच्छा ये बिलावल शहीद की आवाज में है, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है जी, को आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। 27006066 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं जी। आप लोगों की लाइव कॉल्स को हम शामिल कर रहे हैं अभी। क्या कह रहे हैं जी, क्या बात है।

कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, किसी के गम में वकार खोना कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये सिर्फ एक मिसरा नहीं है, ये उन दिलों की खामोश पुकार है जिन्होंने किसी को इस हद तक मतलब बुझाना चाहा या फिर उस हद तक चाहा कि अपने आप को बुझाना वो भूल बैठे, मगर फिर एक वक्त आया कि जब एहसास हुआ या एहसास की मतलब बुझाना, फिर एहसास हुआ कि मोहब्बत अपनी जगह लेकिन इंसान का वकार भी जो है ना अपनी जगह, एक बहुत ही बड़ी अमानत है ना। कभी कभी इंसान किसी की जुदाई में इतना बिखर जाता है कि अपनी हंसी भूल जाते हैं, अपनी नींदें खो देते हैं या फिर लाइक अपने ख्वाब अधूरे छोड़ देते हैं और फिर दुनिया उसे देख कर कहती है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जनाब हर आंसू कमजोरी नहीं होता, बाज आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि दिल ने मोहब्बत बहुत सच्चे अंदाज में की थी। अलबत्ता एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर किसी के जाने से आपकी आप अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पहचान और अपना वकार ही खो दो या खो बैठो तो शायद जो है ना आपने मोहब्बत से ज्यादा खुद को तकलीफ

0: कॉलर चेक करते हैं जी हमारे साथ कौन दे रहे हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मैडम मोहतरमा, आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिएगा, थोड़ा सा लाउडली बात कीजिएगा ताकि सुनने वाले तक आपकी आवाज ठीक से जाए।
1: जी
0: अब आपकी आवाज आ रही है। कौन बात करिए कहाँ से?
1: अटक से बात कर रही हूँ।
0: इतना साइलेंस दे के, वक्फे दे के, इतना मतलब किस्तों में बातें क्यों कर रही हैं?
1: बस ऐसी आज बेल किया मैंने कहा आज कर ले।
0: अटक से कॉल कर रही हैं? अटक कौन सी जगह से कॉल कर रही हैं आप? हेलो, ओहो आपकी कॉल भी ड्रॉप होगी जी।

अच्छा, इसी ट्रैक के साथ मैं इजाजत भी लूंगा जी, आप लोगों से इजाजत भी चाहूंगा। कहते हैं, कहा जाता है कि प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में मिली दिल को हार से डर लगता है। जना मोहब्बत शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, मगर जो है ना इसकी राहों में चलने वाला ही जानता है कि इस रास्ते पर फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं। दिल किसी पर आ जाए तो इंसान बदल जाता है। उसकी दुआओं में मतलब जो है ना चेंजिंग आ जाती है, उसकी दुआएं बदल जाती हैं, उसकी रातें बदल जाती हैं, उसकी खामोशियां बोलने लगती हैं। मगर कभी कभी यही डर या यही दिल का डर इंसान को ऐसे खड़ा कर देता है कहीं भी कि जो के लफ्जों में बयान करना आसान नहीं है। डर इस बात का नहीं होता कि मोहब्बत खत्म हो जाएगी, होता है कि कहीं वो शख्स बदल ना जाए। डर इस बात का होता है कि कहीं कल जिसने हमेशा कहा था कि वो एक दिन अलविदा ना कहेगा, इस बात का डर होता है। डर इस बात का होता है कि कहीं दिल या कहीं जिस पर दिल ने एतबार किया है वही दिल को आजमाइश ना बना दे। जनाब, जिन लोगों ने सच्ची मोहब्बत में दर्द देखा हो ना, वो दोबारा मोहब्बत करने से पहले हजार बार सोचते हैं। वो मुस्कुराते जरूर हैं, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे एक पुराना जख्म छुपा होता है। वो किसी का हाथ थामने से पहले जो है ना अपने टूटे हुए कल को याद कर लेते हैं, और शायद इसलिए बाज औकात दिल खामोशी से कहता है कि मुझे मोहब्बत से इनकार नहीं, बस इस जुदाई से खौफ आता है। या मतलब उस जुदाई से खौफ आता है जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी जो है अंदर से खाली कर देती है। प्यार कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन जो है एक चीज का ख्याल रखिए, मगर एक चीज का बहुत ज्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। मगर ऐसे दिल से कीजिए जिसमें एहतराम हो, वफा हो, सब्र हो, दुआ हो, क्योंकि वक्ती कशिश खत्म हो जाती है मगर सच्चा इखलास वक्त गुजरने के साथ और निखर जाता है। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में यानी कि ताहिर जमान की दुआ में आप हमेशा हमेशा शामिल रहेंगे। जिधर रहिए, जहाँ रहिए, खुश रहिए। प्रोग्राम के बाद भी आप अगर रिस्पांस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जहाँ रहिए, जिधर रहिए, खुश रहिए। जल्दी पाकिस्तान यानी कि हमेशा रहिए पाकिस्तान। अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, फी अमान अल्लाह एंड लव यू ऑल।

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: दादी रेडियो दिल पर स्तासु दजरा आवाज।
2: स्तासु पल चैनल रेडियो दिल पर
3: स्तासु खोखा
4: स्तास रेडियो दिलवर रेडियो।
5: वन वॉइस वन नेशन एंड वन म्यूजिक स्टेशन रेडियो दिलवर एंजॉय द लाइफ।
6: मन का रेडियो बजने दे जरा।
7: Must music, must radio.
8: I can find new ways to motivate them.
9: Important. All that.
10: Real talk, real life, real people, real radio.
11: The station that just doesn't stop.
3: That's the fun. स्तास रेडियो दिलवर रेडियो।
6: मन का रेडियो बजने दे जरा।
7: मस्त म्यूजिक मस्त रेडियो।
12: मन का रेडियो बजने दे जरा।
8: आई कैन फाइंड न्यू वेज टू मोटिवेट देम।
9: इंपोर्टेंट
13: एंड ऑल दैट।
10: Real talk, real life, real people, real radio.
11: The station that just doesn't stop.
14: 94 FM.
0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: दादी रेडियो दिल पर स्तासु दजरा आवाज।
2: स्तासु पल चैनल रेडियो दिलवर।

वेलकम बैक वेलकम बैक। तू मेरी जान बन जाए अल्लाह करे करे। हाँ ग्रहण कदरमंद और को प्रोग्राम था सौर आवाज उजेम था सुकुरबा जहांगीर अली यूसफ जई आओ सिफर 302-55-77-665 बंद रहता राबित कोलिश है और कॉलम रहता पदे कोलिश है मैसेजम कोलिश है और बल जमाता उस ख्वासते चेदा दिवीजू में जो दा जिक्र तस्करा दा मेहरबानी के चिदा मासर पर रेडियो बांधे मक वेता कैसे किसम मालूम पकार भी ना खेरे द शो नस्ता पदे नंबर पाने कॉल या मैसेज पर जरिए पाने तपोस कोलिश है और बराए करम जमाता से रिक्वेस्ट है जब रेडियो शो दौरान के पर मैसेज या पर कॉल बांधे तासो दा पुख्ताना जमाना मकावे ठीक तो जी लेकिन जमुंग रेडियो पॉलिसी भी जमुंग दास खबर अतरी भी पते वजह बने आगे पॉलिसो बांधे मुंगा मल को आगे पॉलिसो न मुंगा अखवा देखवा न शुतले देर पारा बरा सर लगों तक मक कवे कॉल और मैसेज रात को लेप 302-55-77-665 बांधे 0302-55-77-665 बांधे टॉपिक जब मुझे कम दे हसत बाने खबरी को वर्सरा वर्सरा शुक्र बाने खबर है तेरे को दुआना यो बस बिल्कुल मुतजाद दी यो ख्वाच यो इंसान चले अगर बल सो खुद अगत हस कही या पजल के लालच राजी या पजल के वाला जेल सी राजी नो बल शुक्र चे कम दे आगा कि इंसान अल्लाह पाक वाला सो वर्कड़ी पाके पाते आगा अल्लाह रबुल इज्जत शुक्र अदा के चाहिए अल्लाह पदे बने शुक्र दे हसद हासिद इंसान चे कम दे अगर पजान की भी नहीं ऊंची जान लगा टेंशन गूरी असिदा से ला हासिल सोचू ना बगे चाहत दागन सा हासिल नवी उल्टा का तो नुकसान रसी जबकि बड़ रख पांदे चिकम शुक्र गुजार इंसान भी अगवा पखपल वर्क राख से सीधी पाए पाने में मुतमईन नहीं अगबाने बचता टेंशन नहीं अगबाने बचता कर्ज नहीं और अगब कर्जदारी नहीं हुई ठीक था और देर नूरदा से खबर या तरी दास फैक्टर्स पकी ची पाए के दास दागे अगा मतलब मुतमईन ही पके तासो पजैन के सिद्धि सनदी तासो मासरा शेयर को लेशे 302-55-77-665 बांधे हजी 302-55-77-665 बांधे।

राकल मुहली चिव चिवी व पशांत विलिकलेशवी यानी गर्मी तांबी यश्विल उजूह चिरितई व मखुन ददई स शराबो डेर बद दिदास कल वसा अत मुर्तफका डेर बद दिदा जैद फायदी

0: 9 बजो ना तर माजीगर सलूर बजो कोरी डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज यवोलत बजो ना तर मास्पखिन द्रे बजो कोरी गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिरे अमराज दपीर न तर हफ्ते पूरी माजीगर द सलूर बजो ना तर मास्पतन अतो बजो कोरी बा ओपीडी कवि जमू सहूलियात ती चौक प्रवेश लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टू याद मौजूद थी नो पता याद साथे और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
1: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिल पर आपके संग
2: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस।

औकात से ज्यादा मोहब्बत कर ली, इसलिए बर्दाश्त से ज्यादा दर्द मिला।

वो मेरी जिंदगी है और मैं उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं। अब जरूरत नहीं किसी की भी, अब उदासी से मेरी बनती है।

0: ये है रेडियो दिलबर, आपकी दिल की आवाज,
1: आपकी दिल की आवाज। मामू का बोका खुले दे, बोका।